0: 아이야, 아이야, 뭐라고 벌써 찾아? 미간 몇이야?
1: 3일 내기 다 두개로 못다 하이란 와이니 우바자르가 나 카드만다운 나이 자는 벌써
0: 아, 거티 피르만이고 기미코 카드만다 자는 벌써 대인 살레리 버선다 바다르마 다스코 소베이 세와 수비다 소잇코 에브레스 덴털 클리닉 아이소케다 바로 자는 스테인
1: 오라, 게 덴털 레
2: एवरेस्ट डेंटल क्लिनिक सुनु दूत कुंडे नगर पालिका पास बसंत बाजार सलेरी सुनु खुम्बु
0: हमारा सेवा हरु
2: दांत सफा करने दांत टलकाउने दांत में सीमेंट भरने दांत कलर को सीमेंट भरने मधुकाई दांत निकालने दुखी को दांत लाई मधुकाई गरी जरा देखी उपचार गरी दांत बचाउने निकना र लगाउन सक्ने गरी दांत राख्ने ग्यारेन्टी भएको फिक्स दांत राख्ने ग्यारेन्टी भएको पूरे सेट दांत लगाउने बांगो टिंगो दांत मिलाउने दांत को एक्सरे करने सुन चादी को दांत रखने गीजा सुनने रगत आई रखने मुख गनाउने समस्या को उपचार करने बच्चा को दांत निकालने साथ ही किरा लागे को दांत भरने बच्चा को उमेर नपुगी दांत में किरा लागे र दुखी में उपचार करने र मुख नखुली समस्या को उपचार करने
3: नेपाल मेडिकल काउंसिल में दर्ता भएका चिकित्सकहरू द्वारा संचालित एवरेस्ट डेंटल क्लिनिक में व्यवस्थित स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन स्टैंडर्ड प्रोटोकल र अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रयोग गरी सम्पूर्ण सावधानी र बनाई दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू दिइरहेको समेत सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म पुनश्च शनिबारको दिन साथै अन्य सार्वजनिक बिदाको दिन समेत एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिकको सेवा सुविधा लिन सक्नुहुनेछ।
0: एभरेस्ट डेन्टल क्लिनिक बसन्त बजार सोलुखुम्बु ज्वालामय अफसेट र उद्योग वाणिज्य संघ भवनको बीचमा प्रोपाइटर श्रीराम सहनी सम्पर्क 9821129090 र 9746583487
4: एउरो आज मेरो जन्मदिन हो याद त छ नि
5: संसारकी सबैभन्दा राम्री मेरो प्रिय मायालु हजुरको जन्मदिन मैले कसरी भुल्न र ल आँखा बन्द गर त
4: त्यसै जस्तो हुन्छ हजुर पनि ल आँखा बन्द गरे
5: ल अब आँखा खोल त
4: वाओ कस्तो राम्रो उठी अनि मङ्गलसूत्र पनि ओहो मैले त सोचेकै थिएन एकै पटक यति धेरै उपहार पाउँछु भन्ने त मेरो प्यारो बुढो कताबाट ल्याउनु भयो यस्तो आकर्षक डिजाइनका औँठी र मङ्गलसूत्र अरू कहाँबाट हुनु र हजुर

चार कोलिया तथा सोलह मई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस समेत कुंडी नगर पालिक पांच समेरी स्कूल विगत देखने ग्राहक को विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कोलरिया तथा सोलह मई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवाहर का साथ में सब हमारा सेवाहर प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जर्सी प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट सफाई कर स्टेशनरी का सामान होलसल मूल्य में पाई दिव्य कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाई सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य बिक्री वितरण गरिदै आएको छ। सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन मुहाने गीजर गैस चिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ। एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ। हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी पाल्चा वाल मिक्सर मोनो सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाँच ये सब मरम्मत कर गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को टैंकी कलर कर समीरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप बाट गैस सिलिंडर गैस चूलो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203399 0385203060 मोबाइल नंबर 9860321426 9841950 न्यू स्टार कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट

0: Bandhu FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi, hamro abhiyan.
1: Sanche, Suri FM, Studio Time.
2: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतु नगर पालिका 5 सोनू कुंभू.

0: Station. Sony FM is studio time.
1: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
2: I'm Jake Kusatma, New Star Digital Color Lab तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु.